अनुसार ये पता चला है कि 50 करोड़ की रकम एक चटनी की गोनियों में छुपा कर एमजी गाड़ी में रखी गई। और मजे की बात ये है, ये कैश जिसे मिला वो पैसा उसका।

0: Roll camera and action!
1: आदि वो लोग कुछ शूट कर रहे हैं।
2: हमारे बिना शूटिंग ऐसे कर रहे हैं?
3: ये तो अपना गाना। या कम ऑन।
4: बॉल की शूटिंग हमारे बगैर?

नहीं मरना गवारा प्यार में, तुमसे ये कहना है, तुम्हें भी जिंदा रहना है, मुझे भी जिंदा रहना है।